ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

सो साई विठल भजो विठल भजो साई विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो प्रतिवासा साई देव विठल।